0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल विथ बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट विटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदो को डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
2: अडगुरी होइन भाइला

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ। सर्जन फिजिशियन हार्ट जोड़ने नशा प्रसूति रेडियोलॉजी एनेस्थेसिया बाल रोग थायराइड प्रेशर सुगर छाती मुटु नाक कान घाटी टाउको गैस्ट्रिक अल्सर फिजियोथेरापी दूरबीन बिरिबार ऑपरेशन लगायत स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण काम हुन्छ। यो